0: मुख्तार जी कहानी अभी खत्म नहीं करते हैं।
1: नहीं
0: करना चाहिए ना,
1: इतना इतना खूबसूरत गाना है। हाँ। तो इतना और इतना जब खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ है तो इस गाने का एक बीच का अंतर जो हमने नहीं गाया है वो हम सिर्फ कीबोर्ड का सुर लेकर गाते हैं और जो मुखड़ा है आप सब हमारे साथ मिलकर गाइए, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि इन महान कलाकार

0: वचन आपका।
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: बिन भेजाओ संभाल के चुप क्यों चाहे।

0: हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमारी या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, टाइडियों से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज सोमवार का दिन है, 6 जुलाई का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से।
1: भगवान का घर है।
0: हर एक इन्फॉर्मेशन इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0385656560। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है और रेडियो SBS का एप नंबर 0382266611। वेबसाइट होता है radio sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए और हॉलैंड के बीच में मिड नीदरलैंड और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में आप हमारा प्रोग्राम को सुन सकते हैं डे या बे प्लस रेडियो के जरिए अपना मोटरकार में अपना घरों में। रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए भी आप हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और

सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। हर सुबह हमारी सभी भक्त प्राणियों के लिए रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से ये सुंदर सा भजन बस पेश किया जा रहा है। इसी खास भजन के साथ बस प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। 7:00 प्रोग्राम में 10 मिनट व्यतीत हो चुका है। 10 मिनटों ओवर सोफ स्टूडियो टाइट आज मंडा 6 जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सोमवार का दिन है, 6 जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम भजन यात्रा में अब की बार सुंदर सा भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में

पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों 11 मिनट बाकी है प्रोग्राम में, सुबह साढ़े 7 बजे में रेडियो SBS की सरिये प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए इंटरनेट के सहारे ये प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और खास तौर पर हॉलैंड देश के बीच में मिड नीदरलैंड और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में दूर दूर शहरों तक अपना मोटरकार में अपना घरों में ये प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है। आज की प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना। भजन का बोल है, इतनी शक्ति हमें देना दाता।

रेडियो SBS की जरिए ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गई है। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302-66-66-11 और इसी तार की नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। हम देख रहे हैं बहुत सी सुनने वालों और बहुत सी सुनने वालों भी रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है और ऐप कर रहे हैं। हॉलैंड देश से और हॉलैंड देश से बाहर देश विदेश से भी सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम भजन यात्रा आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मनोज मिश्रा की आवाज में एक और अति सुंदर भजन सिर्फ रेडियो SBS की जरिए बस पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए विपिन सचदेवा की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गए प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक सुंदर भजन जो प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए 14 मिनट बाकी है प्रोग्राम में। सुबह 8 बजे में प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में आपकी बार खास सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। एक भजन है जो एक सुनने वालों आज के प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं, तो चले मिलकर सुनते हैं और इस भजन के बाद आरती भजन पेश किया जाएगी।

सुंदर सा भजन आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश की गए। एक दिन ऐसा आएगा, सुंदर भजन आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश की गए। एक सुन वालों की गुजारिश पर, ये निवेदन पर ये सुंदर भजन पेश की गए। चले प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं, और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन। सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए, उनकी पूरा परिवार के लिए, सभी जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए भी ये सुंदर सा आरती भजन पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में श्रेया घोषाल और जावेद अली प्रोग्राम में।

गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आश्रय मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए फिल्म शोबिस की ओर है। शान और अब की बार श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है सभी कामकाज के लिए। रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 032-65-65-60। अनुराधा पोटवाल और कुमार सानू प्रोग्राम में, फिल्म का नाम शुक्रिया।

अली अली खान और साथियों की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हसरो मीठे के गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए एक बार फिर से राहत जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। साथ में होगा श्रेया घोषाल।

साथ फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना आज की प्रोग्राम में अलका जी की आवाज में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है सोल्जर।

0: अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुने लाइव के जरिए ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शहर यूट्रेक्ट से ये प्रोग्राम सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में
1: तुझसे अब मुझे मरना है
0: राहत जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

परस मनी का गीत पेश की गई मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में। अभी आपने सुना वो जब याद आए, रेडियो एसबीएस के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

काफी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है। परवरिश फिल्म का नाम 1958 का फिल्म है।

मुखी सौर लता जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं तलत जी की आवाज में आज की प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हम आपको ले चलेंगे अगली बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है, द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में। मनोज कुमार का फिल्म पहचान, उसी फिल्म का ये गाना। 1970 का फिल्म है, 1973 का फिल्म। मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाए गए पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा के बाद चले प्रोग्राम में लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

आवास में फिहलता आसमान फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में किशोर एन लता जी के आवास में फिल्म प्रेम बंधन का गीत पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई। पुरानी फिल्म प्रोफेसर, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए आशा भोसले और मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में 030-262-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। चलिए द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।
1: एक सूरज है जिसे दहन लग गया, कितनी रोशनी थी और कितना अंधेरा हो गया। एक सूरज है जिसे दहन लग गया, कितनी रोशनी थी और कितना अंधेरा हो गया। हो गया।

हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। खूबसूरत पुरानी फिल्मी गाने नखमे आप हर एक के लिए पेश किया जा रहा है। चले लता जी की आवाज में अबकी बार ये गीत पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और उसी वेबसाइट की जरिए आप स्टूडियो की ओर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई, देखा है तेरी आंखों में सिर्फ प्यार ही प्यार। महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। खूबसूरत प्यार भरी नगमे आज की इस प्रोग्राम में

मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था प्यार किए जा, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई है। तो चलिए अब की बार मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

हसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना, मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में सुनकर और काफी पसंद किया है। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। ये गाना जो है काफी पुरानी फिल्म का है, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में।

0: की ये नजर जाए दिल में उतर कुछ हाय चले।
1: काफी पुरानी है फिल्म का गीत, बस प्रोग्राम में पेश की गए। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में है तो फिल्म रागनी, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में फिल्म रामपुर का लक्ष्मण, उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था रामपुर का लक्ष्मण। उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार मोहम्मद रफी और गीत आदत प्रोग्राम में होगा।

रेडियो SBS के जरिए मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे शैलेंद्र सिंह और कंचन की आवाज में, और फिल्म का नाम है रफू।

शैलेंद्र सिंह और कंचन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अपनी बार एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

0: अपने तन मन।
1: आज एक साथ महके हैं दो गुलाब,
2: एक डोर में होते हैं दो मोती,
1: एक साथ धड़के हैं

की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई नजर फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अबकी बार गाना जो आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, हम आपको ले चलते हैं अबकी बार गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुन वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए, और वो भी अरिजीत सिंह की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए खासतौर पर अरिजीत सिंह की आवाज में गाना भी आपने सुना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में के एन सुनिधि चौहान की ओर हम आपको ले चलते हैं।

uit de film No Entry. KK en Sunidhi Chauhan की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और अलका जी के आवास में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म

0: रेडियो SBS का वेबसाइट radioSBS.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं।
1: दिल जो टूटा

सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11 इसी तार के नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। कुमार सानू और अलका की आवाज में आपकी बार ये गाना, फिल्म का नाम यस बॉस।

आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना और कुमार सानू जी की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा।

सभी सुनने वालों की सेवा में ये दूरिया गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई, फिल्म का नाम था लव आजकल। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बेनी दयाल और शरारा पंडित की आवाज में ये गाना।

राधा पंडित की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले हम आपको ले चलते हैं सोनू निगम की ओर आज की इस प्रोग्राम में। लव इन नेपाल फिल्म का नाम सोनू निगम प्रोग्राम में।

सोनू निगम की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था लव इन नेपाल। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की ये प्रोग्राम में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में शान की आवाज में शान की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS के जरिए श्रिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। इसी तारीख नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। तो चले प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, एक बार फिर से आज की प्रोग्राम में शान की ओर हम आपको ले चलते हैं।
1: कहाँ से ढूंढ कर लाते हो तुम ये सब प्राचीन वर्ड्स?
2: जहाँ से मैं आया हूँ।
1: ओह, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं?
2: प्यार।
1: जस्ट अ टिप, हमारी दुनिया में प्यार व्यार नहीं होता, तो शायद आपको खाली हाथ जाना पड़े, क्यों ना?

बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में शाम के बाद अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

सा उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की प्रोग्राम में जो पीस की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में एक और खूबसूरत सा गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

श्रिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में अभी आपने सुना। लाइव की जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं।

रेडियो SBS की सरिये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आशा सिंह की आवाज में तेरे नैना। अभी आपने सुना गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अपनी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चल

और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनवालो रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.com.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं।

सी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। शेरू तरफ से रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में कुमार सानू जी की ओर एक गाना जो कुमार सानू के आवाज में पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में।

कुमार सानू जी की आवाज में दानव प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनवा की सेवा में सुनवालो हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है रेडियो SBS का 030-265-65-60 सानू के बाद उदित नारायण और साधना सरगम प्रोग्राम में होगा।

गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एक से एक खूबसूरत गाने आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। रेडियो वेस्ट में इसके जरिए चले उदित नारायण एनाल का प्रोग्राम में होगा।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था दहलीज, उसी खास फिल्म का गीत अभी आपने सुना महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में। चलिए प्रोग्राम में फिल्म दारिंदा की ओर, यशुदास और कंचन की आवाज में एक खास गाना आप तक पेश किया जा रहा है। उससे पहले ये छोटा सा डायलॉग।

कीर्ति, कीर्ति, आखिर मैंने तुम्हें पाई लिया। कीर्ति, मैंने तुम्हें पाई लिया। तुम नहीं जानती कीर्ति, तुम्हारे लिए मेरी आत्मा कितने सालों से भटक रही थी। तुम्हारे बगैर जिंदगी का एक एक पल ऐसे गुजरा है जैसे सदियां गुजर गई हो, हजारों साल बीत गए हो। लेकिन कीर्ति, अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता।

कंचन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई हम आपको ले चलेंगे किशोर कुमार की ओर और किशोर कुमार की आवाज में अब के बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना भी आपने सुना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, पुरानी फिल्म दीदार। दीदार फिल्म का गीत आप प्रोग्राम में सुनते ही रहना।

परमेश्वर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज की प्रोग्राम में किशोर और आशा जी की आवाज़ में पेश किया जा रहा है और अब की बार फिल्म का नाम होगा दीवार। तो चलिए मिलकर गाना को सुनते हैं। फिल्म दीवार जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुनने वालों आपकी फरमाइश से हुआ इश्तिहारे जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352-65-65-60। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। ऐसे फिल्म दीवार गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है गाना सुनकर और बेहद पसंद करेंगे।

रेडियो SBS की जरिए किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार की आवाज में एक और खूबसूरत गाना पेश किया।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए मुकेश जी की आवाज में और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम पतंग।

अब उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, एक और बड़ी ही खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में होगा जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे मोहम्मद रफी की ओर। मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में, और फिल्म का नाम फिर वही दिल आया हूं।

0: प्यार फिर
1: रेडियो वेस में इसके जरिए परमेश्वरी मोहम्मद रफी की आवाज में जो फिल्म फिर वही दिलाया हूँ उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तलत महमूद और लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा मीठे प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आर जे अंशली करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशली करमलाल दी फहारत वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। वेल रिएगेरे कैन इट ऑल टाइम सर्फ मना द वेबसाइट www.radiosbs.nl।

हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से आपने सुना टाइटल सॉन्ग अलका याचनिक और उदित नारायण की आवाज में, और अब हम सुनते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से मुंबई दिल्ली की कुड़िया।

चली आई चली आई इज द फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ गजान दूर चित्राएं के एंड द फिल्म काटे कॉम्त इश्क समंदर.

पिया तू अब तो आ जा, बस आउट द फिल्म कारवां एंड आउट द फिल्म जानम समझा करो कौम, सबकी बारात आई डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना, दिल्ली देश को सौंदर अलका याचनिक।

ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। दैट वॉज आउट द फिल्म लुक्का छुपी। ओरिजिनेल इज आउट द फिल्म अफलातून। In het programma Gitong Kelleher via Radio SBS is het volgend liedje Tera Chehra Kitna Suhana Lagta Hai, gezongen door Jagjit Singh. U luistert naar Radio SBS via de website www.radiosbs.nl.

0: लंका फूंक दिए जाकर गढ़ लंका, हाँ लंका फूंक दिए हनुमत ने लंका।
1: माता मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

इस गाने में तो आपने पूरी रामायण ही सुन ली। बेहतरीन गाना आपने सुना उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में फिल्म भवाई से। और अब आप सुनिए फिल्म अजनबी से। मुझको नींद आ रही है, सोने दो। दिल कह रहा है कुछ होने दो।

निगम अलका याच ने एक और कोरस की आवाज़ में आपने सुना ताल पे जब ये जिंदगानी चले फिल्म रेफ्यूजी से। ये पहला फिल्म था अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म हेलमेट से। गोल्ड बॉय और शिप्रा गोयल की आवाज़ में आप सुनिए बर्बाद।

रहना है तेरे दिल में, बस आउट द फिल्म मुझे कुछ कहना है, एंड आउट द फिल्म काबिल कॉम्प्ट काबिल हूँ मैं, खुशाम दो जुबेर नौटियाल एंड पलक मुच्चल।

रेडियो बेएस के जरिए से आपने सुना शान और साधना सरगम की आवाज में कुछ ना कहो का टाइटल सॉन्ग, और अब आप सुनिए फिल्म रामलीला से अरिजीत सिंह की आवाज में लाल इश्क की मलहार।

कभी दिल के करीब, तुम्हें मेरे नसीब, यूं लाएंगे सोचा न था। बेहतरीन गाना आपने सुना संदेश सौंडलिया की आवाज में और साथ ही साथ साधना सरगम की आवाज में भी फिल्म सोचा न था से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, फिल्म हैरी मेट सेजल से।

फिल्म निकाह से आपने सुना सलमा आगा की आवाज में दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए। खुशियां और गम सहती हैं, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है।

आज रपट जाए तो हमें ना बुलाइयो इस फिल्म नमक हलाल इस गुस्सा दौर किशोर कुमार एंड आशा भोसले. Uit de film Pagelpanti komt dan het volgende liedje via Radio SBS. Gezongen door Yo-Yo Honey Singh komt Tumka.

हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा।

0: चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल, बिजली, तितली, जुगनू, कोई नहीं है ऐसा तेरा हुस्न है जैसा। हुसामुद्दीन जगजीत सिंह एंड अलका याचनिक हेफ्ट यू गोहोर्ड आउट द फिल्म तरकीब एंड आउट द फिल्म सारे सपने कम्प अपने हुसामुद्दीन अलका याचनिक दे सकेर जरा जरा सी बातें तेरी मुझको याद आती हैं।
1: हसीन लम्हे, शरीर लम्हे, शर्मीले लम्हे, झिझकते लम्हे, पिघलते लम्हे, धड़कते लम्हे, मोहब्बत में गुजरे ये तमाम लम्हे दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन ये निशान न मिटते हैं न हल्के होते हैं।

0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का। कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

तू ही तो है, काश तुझे खबर होती ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं,